0: गुड न्यूज एफएम 105.1।
1: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
2: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

0: 甲骨尼姑姑把铁打到骨头，他那头也难，俺那准备不帮他死干，帮我了。猪猪家里的男人说：“为个丫头杀了人了，干没比你好了。”因个干不哈的啦，因说为个丫头不哈的，骨个吹骨大家追个呀太了好了。因说他个厉害那个的，也许丫头把那个老师个什么呀，而且因个比阿比说些个人呢。为个呢，一个实力强的家呀，莫不得。有份呢，那个我得有办法给他多个多。为个呢，其他平常还为个丫头比说什么呀？也许呀，其他平雅各、约瑟、西门和犹大可。为个呀，普提比塞瓦亚那地不勒一边，莫得出来呢？为个莫西和可大家比说什么呀？托大天也许呀，你的别那呀说追过可。其实可是呢，其前早比我也他提提比你个，莫提呢我什么人有可得呀呢？卢卡金苹果的爱有你呀个，你那个不给他照顾路，哥哥还没弄到，也许呀溜溜无呢，说呢，为个了因他立法说呀，他才打压的了。苏莫奴在那把为马斯的窝上。我他妈把我搞来把的，莫斯的大主记者打打给他，后来他他呢？记得说呀，阿爸妈也没救，而且爷爷莫夫萨没能急忙接来追陪莫夫。他个克罗斯古比亚，如果溜溜为莫莫能急忙接来追莫夫，区别莫得。要不是呢，八戒妈呢我当年好给，前面妈不话打字给咱，打打给边，那前面上台把你说的不准别说噻。七边两都边，七边马步，七边几万年巴萨沃，七边大树记者到这边马维亚那中国家，也一个不提不的他追追到什么个白天，他个个女人也蛮厉。今天还一首 Krishna 复刻歌唱站在拉古卡，我那我亚个几万年里，没的个五个他个个比高不到年龄满了。也许呀，他没有打动过大家住了，而嘞，为个呀，哥哥不提什么比么有份呢，有强点呢，大家你了，没得金苹果的也有，金牛果、金松果不给他打过多，而嘞有份那样接了的上，我呀个希望应该突然比了，而嘞，因上我呢，托看也许呀到年个了，托年呢，也许哪吒说呢，什么都他是咋了，也许。我呀，有么？哥哥，修过你所克亚的一家了。我呀，比他个小家亚的你认得大别的了。其实罗别的个天呢，咱们那亚一个的一个看，也是弗洛克里个乌达人比乌个看。其实莫提那亚么么努，西不勒古里都靠追。我说好亚莫非个追夫，得了其实，因个米图亚的几个小家亚的不那个追个比么久。成龙也是他个门的里亚的，门家的厉害，咋地不嘞？西边我也是亚的，比耍西边，莫那为的个，西家几双，三顿那咖啡。如果苦我的爱有金牛股、金松股，不给他照顾度，成龙为个把哈的布拉纳亚咋了？阿不嘞，这漆黑为个老板没说亚的布拉纳亚难的了。刚你可能输他，接纳到少打一边没得，几米去呢？厉害的了，阿嘞？因的不理大家那出来的了，因的理念也是这七年个不然那样的，理吧也是他不理的，他的亚克那嘿祝你个我阿那里都可惜个我惜个看大家的了。如果今天个我带有水杯个包给大家的个都为个那大家的个看因上出黑推给莫夫的，因个那个嘞，出海看都还我那么复杂，我跟因上，我个呀个看推荐到么复杂。要别人了没别，包括呀你的，他的耶稣基督他是大家的上，我个呀的都可别，古日些要开马个看，苏那别里的比说什么呀，推荐个古的那么呀，阿来吉上，耶稣呀接了到么的，他们先接班呀你的，我个呀的都可别个。六个课，礼拜一学堂接了到里些，礼拜五为亚南地不来，为装备十个西的特别学习课的，我说那亚南地了。如果你那个我带有你出国报给大家照顾度，当然你哦，记得专家吹么么牛津那把些非洲那中国度，这边到过来，啥地方接了没得，从没想去到别学习课，也一个去休息去到个体待机。 यसो थोन लुइकी कि वया अब पाखे व प्रकाश या माध्यम पत्र सोया त मसु धका अस्वीकार्य लुका निगो यो स्वीपेङ्गु पत्के धाया टाउको दो वैकल धाया दिल पत्रुस जी छन् त धा थौ खा हाले छित स्वक्क ताक मसु धका धाई यसो गछियान सकसित निराश या त क्याका बिल वेकया यो म दाजु कि जपिन्छ वेकया त विश्वास मयागु वेकया सेवका या त समर्थन मयागु वेकया छम चेला वेकया त धोका बिल मे म छमेस्या वेकया त ममस्यु ताल वा वेकया मुद्दा त धङ्गु भिड वेकया त क्रुसे यख्यामा गु माग्या त युहुन्ना न्यागो अध्याय यो स्विगु पत्के ध्यात गुदो थम जी छु हे या मफु दानजी त दयादी थे जी न्याय जक्क यागु ख उजुगुनी जी न्याय यानुगु ठिक जु छ्यादासा जित एथे जी न्याय यागु मफु बरुजित छोया हमिस्त यो थे न्याय यागु ख व थम छुयाए फै मखो धका यसो थुकल यो मनुते पाखे वु निराशाया लिसे ल्या त थगु क्षमता सोया न थ अबु परमेश्वरिया शक्ति भर परे जुई मागु ख यिनमिपि यसो थगु इच्छा सोया न थ अबु या इच्छा कथ यागु ल्या दिल वो मनुते त सोया परमेश्वर या त ले त्यागेको ध्यान बिल उखी मनुतेसँग वया त निराश याई बोले वयाको प्रहार यक्कु हे नरम जुल छ्यादासा यसु थगु जीवनिया नीति परमेश्वर या इच्छा अनन्तकाल नपुङ्की तकासु वर्तमान अवस्था पल्सा भविष्य पाखे सोया दिल परमेश्वर या विश्वास पुङ्क आज्ञा माने याना वेकया विश्वास योपी सकसित अनन्त जीवन दई धका यशु या त विश्वास दुखुख वेकया क्रुसे बलिदान वो सोनु लिपा सिपी माध्यम वो माना दिगुने मनु या पाप या पुङ्क भुटाने जुई छिगु बारे छुदु छि यशु या त छिगु नुगले स्वीकार याए धुनला मखुसा आ वेकया ना सतेगु निख छि पापी ख धका मसिका दिस वेकया के क्षमा फना दिस अले छिगु जीवने यशु ख्रिस्ट या त प्रभु देखेगु ल्या दिस अले छिन बचेजुई यो पिनियन मिपि ठौयु वचन निना दिगुने छि सकसित न परमेश्वर सुव्याबीमा जयम छिमसा नकतिन हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षक व आत्मिकी लपु केना दिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगो मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवादीमा जय मसी।
1: टाइम चेक यति बेला बिहानको 8 बज्यो।